0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में मका मुआयदो थियण जी खुशी में पाकिस्तान में जशन इस्लामाबाद के टिन मुल्क के झंडन से सिंगारो हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत टिन मुल्क के सरबराहन जो तस्वीरों भी लगल। वजीर आजम शहबाज शरीफ तारीखी मुआयदे से सयूं करण बाद बे पहुंची हो। पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के सरबराहन तारीखी दिफाई मुआयदे से सयूं कयूं हुयूं।
4: पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में थियल टि मुल्की दिफाई मुआहदे के मुल्की तारीख के अहम कामयाबी करार दई छो। मका दिफाई मुआहदे के मुमकिन बनाण से वजीर आजम ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सारा। बिलावल भुट्टो जरदारी चो तो दिफाई मुआहदो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है।
5: शुरू हो चुकी है टिक टॉक
6: और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
3: उबते गणप कदड़ के गणप ए पान भी सीधा थी वा। पीपुल्स पार्टी वफाक में सागे पगार से कम कदी रही। अवाम पाकिस्तान जो मालिक है। कश्मीर ए पाकिस्तान के तालुक के केर भी खत्म नो कर सके। पाकिस्तान कश्मीर का सिवाय मुकमिल ना है। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज लीग की होंगी।

0: इंतज़ामी बाबत मान सां ॻाल्हियूं आख़िरी मरहले में दाख़िल थी वियूं आहिनि। आबनाह हरम जो खुलण कुझु मां ॿियनि शर्तनि सां बि ॻंढियल आहे। इस्लामाबाद मफ़ात नामे में भञकड़ियुनि ते ॾंड वारो मामिलो बि शामिल आहे। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त अमरीका पारां समूरा शर्त तस्लीम करण बैदि ई आबनाह हरम खुलंदो।
1: सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपी में ख़ारिजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन 7 दहशतगर्द बि मारिजी विया। हंगो में फायरिंग जी ॾे वठि में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा इकराम शहीद थी वियो। ISPR मूजिबि हंगो में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा इकराम शहीद थी वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं घरू मोहसिन नक़वी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा इकराम खे भेटा पेश। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानी जी कर्ज़ी आहे। शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे। दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो।
0: पाकिस्तान में हलंदड़ हफ़्ते महांगाई जी शरह में 9% खां वधीक वाधि रिकॉर्ड पचाइण वारो तेल गिहु खीर जो वॾो तइदादु गैर मयारी हुअण जी बि तसदीक। मनसूबाबंदी वारी वज़ारत पारां जारी कयल रिपोर्ट में चयो आहे त मुल्क मां पचाइण वारे तेल गिहु ऐं खीर जा 491 नमूना गॾु करे चेक कया विया आहिनि, जिन मां 176 नमूना घुर्बल मयार ते पूरा न आहिनि लथा। गिहु जी 204 नमूननि मां 98 मयार ते पूरा न लथा। कुकिंग ऑयल जा 40, खीर जा 26 ऐं मिल्क पाउडर जा 18 नमूना गैर मयारी निकिता।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: रंग रौनक ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ साईं त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयारु कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
0: इस्तेमाल करियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खेडि॒यो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾींहुं अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो। वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार,

हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असा जे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञाब वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फैदान चया है तो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया की दिफाई मुआहदे जो हदफ ईरान न है। ही नेटो मुआहदे जड़ो है। जेस तई मेंबर मुल्क से हमलो न थो ईरान समेत कें भी मुल्क खिलाफ कार्रवाई न थी। नेटो मुआहदे की शिक पंज तहत मका मुआहदे में एक बे की दिफा की जमानत दिनी वही है। नेटो जिया टई मुल्क एक वजारती कमेटी कायम कंदा जो सेक्रेटरिएट सऊदी अरब में होंद। टेक्निकल मामला हल थे बाद मिस्र बेदिफाई मुआहदे में शामिल थी सके तो।

पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में मका मुआदो थियण की खुशी में पाकिस्तान में जश्न। इस्लामाबाद के टिन्ही मुल्क के झंडन से सिंगारे वो वजीर आजम फील्ड मार्शल समेत टिन्ही मुल्क के सरबराह जो तस्वीरू भी लगल। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तारीखी मुआदे से सयू कर बाद देह पहुंची वो। पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के सरबराह तारीखी दिफाई मुआदे से सयू कई हुई। कानपुर शहर में मुबैना तौर जहरीलो खाधो खाने सबब टे बार फौत सत बेहोश। गुलजार कुरेशी के घर में मुबैना तौर जहरीलो खाधो खाने सबब दह भाती बेहोश थे। इलाज दौरान पंज वरन जो जैन कुरेशी ए टिन साल गुलजेब ए निगरी मुस्कान फौत थे। गुलजार समेत बया अस्पताल में इलाज हेठ।

0: ऐं यमन जे सरकारी फ़ौज हूसिन ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। परे ख़बरूं इदारे मौजिबि मारब वारे इलाइक़े में हूसी तनज़ीम इंसारुल्लाह ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई। हूसी बाग़नि जे केतिरा ई ठिकाणा तबाह थी विया। यमन जे बचाउ खाते जो चवणु आहे त हूसी बाग़नि यमन जे मैशत खे तबाह करे मुल्क में फिरके वारियत खे हथी ॾिनी। संदन हर अगराई जो मोटो जवाबु ॾिनो वेंदो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरण जो आवाज़
1: GFM 90.8 जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: हर दिन
4: जी हाँ भंजकड़ी की सूरत में ईरान के पैंजो रद डोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सा अन्या तई रवियो तब्दील न थियो आहे ईरान भी तैयार आहे

तुर्की जे परदेही वजीर हाकान फैदान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्की जे दिफाई मुआहिदे जो हदफ ईरान ना आहे ही नेटो मुआहिदे जेड़ो आहे जेसताईं मेंबर मुल्क ते हमलो न थींदो ईरान समेत कंहिं बि मुल्क खिलाफ़ कार्रवाई न थींदी नेटो मुआहिदे जी शिक 5 तहत मका मुआहिदे में हिक ॿिए जी दिफ़ा जी ज़मानत ॾिनी वई आहे नेटो जीअं टेई मुल्क हिकु वज़ारती कमेटी क़ाइमु कंदा जंहिंजो सेक्रेटरेट सऊदी अरब में हूंदो टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र बि दिफ़ाई मुआहिदे में शामिलु थी सघे थो मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान अॼु पंजाब बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मथां इन इलाइक़नि ऐं कश्मीर जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति पइजी सघे थी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क जे वॾनि दरियाउनि में पाणी जे वहिकिरे में वाधि जो इम्कान ज़ाहिरु करे छॾियो तंगवाणी वेझो घर मां फुर ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो ॻोठ सादिक कोसो में घर मां चोरी ख़िलाफ़ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि इंडस हाईवे बंदि करे छॾियो ॻोठाणनि जो चवणु हो त हथियारबंदि घर में दाख़िल थी घरबातियुनि खे यरगमाल करण बाद तशदुद कयो मोटरसाइकिल ऐं ॿियो सामान बि फुरे विया आहिनि फुर थियल सामान वापसि करायो वञे घोटकी भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल ॿिनि भाइरनि जी तदफ़ीन पुलिस जूं चढ़ायूं अशरफ अली ऐं शाबान घोटो जी जनाज़ निमाज़ घोटु गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वई हमले में ज़ख़्मी थियल ॿिनि भाइरनि फयाज़ ऐं वसीम घोटो जो सखर इस्पताल में इलाजु हलंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जे कचे जे ॻोठनि में चढ़ायूं जवाबदार घर ख़ाली करे फरार कानपुर भरिसां ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि फ़ौत थियल टिनि ॿारनि जी तदफ़ीन माहौल सोगवार मदनी पाड़े में फ़ौत थियल गुलज़े मुस्कान ज़ैन कुरेशीअ जा मड़ खॼण वक़्तु रोजराड़ो मची वियो फ़ौती ॿारनि जे जनाज़े निमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरनि जी शिरकत टिनी मासूम ॿारनि जा मड़ समे आलनि अखियुनि सां मिटी माहौल आहे

0: बालडीह के अगवा के विवाह है एसएसपी खैरपुर डीआईजी सखर नोटिस वी बालडी बाजियाब कराई।
1: सोलर एंड बैटरी से डायरेक्ट
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असा जे हारी साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

0: सोलर है बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन जे मुक।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

विदुली कहती है हाय फेवरेट सॉन्ग, हैप्पी कहती है दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, वाह वाह वेरी नाइस थैंक यू। ओके जी चाचा खालिद के दी आज शायद शाम वाला शो मिस हो जाए, गोइंग टू आउट साइड, कोशिश करूंगा। चलें आप कोशिश कीजिए, थैंक यू सो मच चाचा, आप इतनी परवाह करते हैं। और हिदायतुल्लाह कहते वैसे खूबसूरत तो बहुत शुक्रिया थैंक यू। हाँ वो बिल्कुल सही था जो असा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जताबीदार आयो मोहम्मद जमान किथे हुआ बाबा।

पुजुन बाबा सिर्फ रंग कारो थी वेंदनि एक नी अची वेंदनि ऐं चेहरे ते खोड़ सारा प्रॉब्लम्स अची वेंदा छो त जॾहिं तव्हां कंहिंखां हसद कंदा आहियो सड़ंदा आहियो त पोइ तव्हांजी पंहिंजी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे सो खैर टेंशन न वठो बाबा स्किन खे सफ़ा सही सही सुहिणो सुहिणो रखो ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमालु कंदा रहो

बिल्कुल प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप हमारे साथ मौजूद है जनाब, आपको वेलकम कहा जाता है। और इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। और हमारे साथ ही जी वरियाम अली क्या कहते हैं सदरा, हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड सलाम हो दिल से आपको, वालेकुम असलाम हो आपको भी, थैंक यू आप हमारे साथ हैं।

आवाज़ सही वाह, आवाज़ सही वाह, ॾाढो ख़ूबसूरत गानो। हुन सां गॾोगॾु अच्छा लुबना की शायरी पढ़ रहे थे। लुबना लिखती है कि एक तेरी याद जो सीने से लगा रखी है, हमने दुनिया में एक अलग दुनिया बसा रखी है, हमको मालूम नहीं चाहत के तकाजे, लेकिन तेरी बातों के सिवा हर बात भुला रखी है।

था। अच्छा पता नहीं क्यों ये गाना सुन रही थी तो मुझे दिया की याद आ गई। हाँ जी बहुत अच्छी लड़की ये माशाल्लाह, और चोरी चोरी हमारा शो भी सुनती है। अच्छा ना खाना दर्दी दिल कहती है वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू। अच्छा वासु भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। निदली कहती लास्ट में कोई ओएसटी प्ले करना टाइम मिले तो, जो हम दोनों का फेवरेट हो, हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे, ठीक है। और हैप्पी कहती आज भाई शाम वाले प्रोग्राम में मिलते हैं, जी जी इंशाल्लाह। दर्दी दिल कहती है दिल कर रहा है चंदा बोलती जाए हम सुनते रहे बस। अल्लाह मथे ने चारे जनों दवा।

लिस्ट में मौजूद है, जो कि मैं सोच रही हूँ इस गाने को हम डेडिकेट करेंगे चाचा को. वैसे चाचा आपने मास्टर मंजूर के गाने की फरमाइश कर दी थी, तो मैंने सोचा मास्टर मंजूर का गाना तो चल गया ना, तो ये वाला गाना आपको डेडिकेट कर देते हैं. इसी के साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या बात है जी. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ऐसा वाला सीन बनता है कि बहुत से लोग कहते हैं भाई हम क्रीमें नहीं लगाते. अगर आप क्रीमें नहीं लगाते हैं तो कोई मसले की बात नहीं, आपके पास डी स्किन फेस वॉश भी मौजूद है. फेस वॉश यूज कीजिए, अपना चेहरा अच्छे से क्लीन रखा करें और खूबसूरती ही खूबसूरती आपको मिलेगी जब आप डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं. तो डी स्किन फेस वॉश और साथ में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मिल रही है, दोनों चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक लगाइए. अगर आप कोई एक चीज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए.

अच्छा मुजाहिद मरी के हमें सुन रहे हैं, मुजाहिद मरी कराची से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम कहा जाता है। और नदरी कहती है क्या मस्त जिंदगी बर्बाद हो रही है, हाय हाय। मामा समान भाई कहते हैं सॉरी बुआ जी बस मसरूफियात है। चलें कोई बात नहीं, आप इजी होकर आराम से फ्री होकर हमारे प्रोग्राम में आ जाइएगा। सादिया थैंक यू सो मच, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया। हेपी आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आया। अच्छा मायरा भी हमारा शो सुन रही है, मायरा आपको भी वेलकम।

बाकी कुछ माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी नाराज़गी बि सुठी लॻंदी आहे. वैसे ई जंहिंखे दिलि सां मोहबत कई वञे, जंहिंखे दिलि सां चाह ॾिनो वञे, एतराम ॾिनो वञे, प्यारु ॾिनो वञे, त उन जी नाराज़गी बि सुठी लॻंदी आहे. सो बिल्कुलु तव्हां हाँ जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. अली कहते हैं, अली मुर्तजा कहते हैं कि चुड़ैलों को आना मना है, वे चुड़ैल कल आई थी. और लुबना कहती हाय क्या सॉन्ग प्ले किया, अच्छा लगा ना. बिल्कुल जी, आज मैंने थोड़ी सी अपनी मनमानी कर ली, मैंने आज अपनी पसंद के गाने लगा लिए हैं. भाई गाल तो वैसे दीदी, सो सबने की प्लेलिस्ट बनी है, तमा जा भी कुछ गाना हुंदा, पर तकरीबन मां कोशिश कदम तो तांगे सुठी सुठी प्लेलिस्ट बुधाई वने. सो बिल्कुल प्रोग्राम जो टाइम थियो खत्म, तमा का वटुंदा इजाजत, वरी मुलाकात तमा से थी पई मुंजी 5 बजे वाले प्रोग्राम में. सो तमा जॉइन करना लाजमी, आई पंजो ओ हिनो सारो ख्याल रखना, किते का गलती थी हुजे तो माजरत कयो था, के जो फीडबैक रहजी वयो आए, के जो गानो रहजी वयो था, सबने का माजरत कयो. So, Moklani Nahi Babu Sin Salamat Sa Salamat Allah Hafiz. Bye-bye. Love you all and take care.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: सा बहाल करण ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी खत्म करण पाबंदन में नरमी जंगी नुकसान जो मुआवजो देण ईरान खिलाफ धमकियों बंद करण शामिल है सफारतकारी अमेरिका के ईरान से मफाहमत से मजबूर कयो मायदे ते पहुंचने लाए हाने सुठो वक्त है ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो तो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त नामे तहत अमेरिका के आबना हुरमज बाबत ईरान ए उमान की गडियल गाइडलाइंस से अमल करण घुर्जे हा भंजकड़ी की सूरत में ईरान के पांजो रद्द अमल देणो पयो दुश्मन जाने तो वो सिर्फ जंग से ईरान के हुक्म मनण से मजबूर न थो करे सके दोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान से अना तवियो तब्दील न थो है

0: टंगवाणी वेझो घर मां फुर ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। ॻोठ सादिक खोसो में घर मां चोरी ख़िलाफ़ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि इंडस हाईवे ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। चोरी थियल सामान वापसि कराइण जो मुतालबो। गढ़ी खैरो में वधंदड़ बदअमनी खिलाफ़ रहवासी सरापा एहतजाज बणिजी विया। सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो। चोरी ऐं फुर जे वधंदड़ वारदातुनि ख़िलाफ़ शहरनि ऐं सहाफ़ीनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। रहवासियुनि जो चवणो हो त सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा जमालीअ खां फुर थियल मोटरसाइकिल समेत वारदातुनि जो नोटिस वरितो वञे। बदअमनी सबबु परेशान आहियूं, बदअमनी ते ज़ाब्तो आंदो वञे। घोटकी भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल ॿिनि भाइरनि जी तदफ़ीन पुलिस जूं चढ़ायूं। अशरफ़ ऐं शाबान घोटो जी जनाज़े निमाज़ घोटु गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वई। हमले में ज़ख़्मी थियल ॿ भाइर सखर इस्पताल में इलाज हेठि। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जे कचे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में ऑपरेशन। जवाबदार घर खाली करे फरार। ऐं खानपुर भरिसां ज़हरीलो खाधो खाइण सबबु फौत थियल टिनि ॿारनि जी आलिन अखियुनि सां तदफ़ील। माहौल सोगवार बणियल। मदनी पाड़े में फौत थियल गुलज़े मुस्कान ज़ैन कुरेशी जा मड़ खजण वक़्तु हर अख आली। फौती ॿारनि जी जनाज़ नमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पख

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा चीन पारां सिंध के लेडी हेल्थ वर्करन जे लाए 2000 घर ठाहे देण जो फैसलो। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील, मेराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। निसार खेड़ो आई रेवेन्यू ऑफिसरन मथा मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार जा इल्ज़ाम, जांच जो हुकुम। तालीम खाते पारां सरकारी स्कूलन जो नओं टाइम टेबल मुकरर, सुबुह 8 खां 2:30 बजे मंझंदि ताईं स्कूल खुलियल रहंदा। पुरंजी रूहानी पेशवा पीर साहब पागार चूंड कौमी नौजवान सां मुबैना ज़्याती कंदड़ पंजनि जवाबदारनि जा हथ बंद करे छॾिया। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध कराची ऐं नवनि सूबनि जो सवाल। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील, एराज़ीअ जो तइन मार्केट अघनि सां लाज़मी करार। 5 लख टन पर ॾेही कणिक ख़रीदारीअ जी मंज़ूरी, मेहराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। उन ॾस में वज़ीर आला सिंध सैद मुराद अली शाह जे सदारत में थियल काबीना इजलास में सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 ते गौर वीचार कयो, जंहिंजो मक़सदु सदी पुराणो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 खे सूबे में सरकारी ज़मीन जे इंतज़ाम, अलाइनमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ जदीद ऐं शफ़ाफ़ क़ानूनी फ्रेमवर्क सां तब्दील करणु आहे। तजवीज़ कयल क़ानून साज़ी मार्केट ते ॿधल वैल्यूएशन, शफ़ाफ़ अवामी नीलामी जो तरीक़ो, अलाटमेंट लाइ वाज़े क़ाबिलियत जा मयार, सख़्त इंतज़ामी शिकूं ऐं शिकायतुनि जे अदाले जो हिकु मौसर निज़ाम मुतारिफ़ कराए ज़मीनुनि जे गवर्नेंस में वॾे अरसे खां ईंदड़ मसइलनि खे हल करणु चाहे थी। नओं फ्रेमवर्क ज़रई ज़मीन सां गॾु सनअती, रिहाइशी, वापारी, अवामी मक़सदनि ऐं एम्यूनिटी मनसूबनि जी ज़रूरतुनि खे बि पूरो कंदो। काबीना नवाब शाह राणीपुर मेहराण हाईवे जे पंड ते टूल टैक्स लागू करण जी मंज़ूरी ॾिनी। इजलास खे ॿुधायो वियो त हीउ हाईवे शहीद बिनजराबाद, नौशरफ ऐं शेरपुर ज़िलनि खे पाण में मिलाए थी। 41 अरब रुपियनि जी लागत सां रोड खे डबल कयो पियो वञे। उन ई रोड ते रोज़ानो 22,000 खां वधीक गाॾियूं गुज़रनि थियूं। तजवीज़ कयल टूलिंग सिस्टम मां लॻभॻि 2.14 अरब रुपया सालियानी आमदनी थियण जो इम्कान आहे। काबीना सूबे जे खुराक जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जे लाइ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ज़रिए 5 लख टन कणक दरामद करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में कणक जी कुल दस्तियाबी 4.84 ऐं सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे। लॻभॻि 1.69 मिलियन टन खोट जो इम्कान आहे। गौर वीचार खां पोइ काबीना वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कोआर्डिनेट कयल फ्रेमवर्क तहत TCP ज़रिए 5 लख टन कणक जी दरामद जी मंज़ूरी ॾिनी। काबीना एक्साइज़ खाते जे गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऐं इंश्योरेंस निज़ाम में सुधारनि जूं तजवीज़ूं मंज़ूरु करे वरितियूं। ऑफ बोर्ड ऐं तबाह थियल गाॾियुनि जी डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसीअ जी मंज़ूरी, इस्तेमालु न थियण जोॻियो या सिस्टम मां ख़ारिज थियल गाॾियुनि जा मालिक 30 सेप्टेम्बर ताईं लिखत में पधराई जमा कराइण जा पाबंद हूंदा। जुलाई 2010 खां टैक्स अदा न करणु ऐं पधराई जमा न कराइण वारनि गाॾियुनि खे ऑफ रोड तसवुरु कयो वेंदो। रहतूं अदा न करण सबबि 60 ॾींहनि बाद गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन रद्द कई वेंदी। गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम खे वधीक शफ़ाफ़ ऐं इतराइतो बनाइण जी बि मंज़ूरी। मोटर डीलर्स वटि रखण जो मुदो 12 महीननि खां वधीक न हूंदो। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत पारां ट्रांसपोर्ट ऐं मरमती ख़र्च खणण जे सूरत में घरनि जो अंग वधाए 40-19 करण जी आछ। उन ॾस में सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत चीन तरफ़ां बोर मुतासिरनि जी बहालीअ जे लाइ ॾिनल ग्रांट मां लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ प्री फेब्रिकेटेड घरनि जी तामीर वारे मनसूबे जो जाइज़ो वरितो आहे। रिथा मूजिबि शुरूआती तौर 3000 घर तामीर कया वेंदा। जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ारत ऐं सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट ऐं अॾावती ख़र्च बर्दाश्त कया त उन्हनि घरनि जो अंग वधी 6000 ताईं पहुची सघे थो। सिंध सूबे खे 4019 घर मिलण जो इम्कान आहे। दस्तावेज़ मूजिबि चीनी ग्रांट जे मजमूई रक़म 800 मिलियन RMB आहे, जंहिं मां 300 मिलियन 11.80 अरब रुपया RMB लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ घरनि जे तामीर लाइ मुख़्तस कई वई आहे। चीनी वफ़द तजवीज़ ॾिनी आहे त हू प्री
फैब्रिकेटेड घरनि में ब कमरा हूंदा, जिन मां हिकु कमरो क्लिनिक या तिबी ख़िदमतुनि लाइ ऐं ॿियो रिहाइश लाइ मखसूस हूंदो। हर घर जी वेकर 3 मीटर ड्रेग 8 मीटर ऐं ऊचाई 2.6 मीटर हूंदी। कुल तामीर थियल मीटर हूंदी। घरनि में बिजली जे अंदरूनी वायरिंग, रोशनी, भित ते लॻल पखो, बरकी साकट, प्लम्बिंग, ज़रूरी फर्नीचर, सोलर पावर सिस्टम, वाटर पंप ऐं पाणी जी टांकी समेत बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। उन्हनि घरनि जी उमिरि 20 साल ॿुधाई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त 300 मिलियन RMB जे बजट मां 3000 घर तामीर थींदा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वज़ीर आज़म जे हिदायत ते मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 मुलतवी करे छॾी। 15वीं चयो वियो आहे त MDKET जी टेस्ट हाणे 16 अगस्त बदिरां 20 सेप्टेम्बर 2026 ते थींदी। तारीख़ तब्दील करण जो फ़ैसिलो इम्तिहान खे वधीक मुनज़िम, महफ़ूज़, शफ़ाफ़ ऐं उमेदवारनि जे लाइ आसान बणाइण जो मक़सदु सां कयो वियो आहे। इम्तिहान जी तारीख़ खां पोइ ॿिया समूरा शर्त ऐं ज़ाब्ता बरक़रार रहंदा। लाड़काणे में एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत पारां PP सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियत जे रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार बाबति जांच जो हुकुम। 6 हफ़्तनि अंदरि जांच रिपोर्ट तलब। हुन सिलसिले में मिलियल ॼाण मूजिबि लाड़काणे जे एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत अॻूणे तालिक़े नाज़िम क़ुर्बान अली अब्बासी तरफ़ां दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियतुनि जे सरकारी रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमालु बाबति इल्ज़ामनि ते शुरूआती जांच जो हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रीजनल डायरेक्टर खे हिदायत कई आहे त 6 हफ़्तनि अंदरि जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश कई वञे। दरख़्वास्त गुज़ार क़ुर्बान अली अब्बासी मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो आहे त निसार खोड़ो जे हिदायत ते अॻूणे एडिशनल कमिश्नर, अॻूणे असिस्टेंट कमिश्नर, अॻूणे मुख़्तियारकार ऐं ॿियनि लाॻापियल आफ़ीसरनि मुबैना तौरु मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार करे गैर क़ानूनी क़दम खयां। दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई आहे त सिंध हाई कोर्ट पारां रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार रोकण बाबति जारी कयल हुकमनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौरु रिकॉर्ड में फेरफार कंदड़ ज़िमेवार माण्हुनि ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई करे। अदालत पंहिंजे हुकुम में क़रार ॾिनो आहे त इल्ज़ाम जी हक़ीक़त मालूम करण जे लाइ मुकमल जांच ज़रूरी आहे, जंहिंखां पोइ वधीक कार्रवाई बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। तालीम खाते सिंध सरकारी स्कूलनि जो नओं टाइम टेबल मुक़ररु करे छॾियो आहे। जारी कयल सर्कुलर मूजिबि 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं प्राइमरी स्कूल सूमर खां ख़मीस ताईं सुबुह 8 खां 2:30 ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल जुमे ॾींहुं सुबुह जो 8 खां 1 वॻे ताईं खुलियल रहंदा।